0: 慈济人文置业荣获休斯顿国际电影节四项金奖，历史与考古学类、手藏历、我的父亲与故宫、公益广告、银发旭日系列、纪录片类、280公斤的逆袭，
1: 剩下94公斤了。
0: 纪录片摄影、能登、复兴之美，四项金奖是肯定，因为有您，我们才走得更远。慈济人文置业，欢喜感恩。印度，一个万物皆神奇的国度，人民却始终摆脱不了贫苦交织的宿命。为了觉察人生真理，2500多年前，佛陀走入人间，替众生寻求离苦得乐的解药。
2: नहीं भगवान तो हम नहीं मानते हैं भगवान एक क्या होता है कि एक आस्था की चीज है लेकिन बुद्ध भगवान एक क्या है ह्यूमन बीइंग बुद्ध है
0: 2500多年后我们跟着佛陀足迹在苦集灭道的旅程中回归佛陀本怀